0: 中吊起等方式搜救受困居民，将伤者送往医院。最新卫星图像显示，尼泊尔与中国西藏接壤山区26日遭严重山洪或泥石流袭击后，大量冰块、岩石或泥沙堵塞河道，并在上游形成不稳定的堰塞湖，且水位持续上升，开始出现溢流。由于担心引发次生灾害，重灾区拉苏瓦县的搜救工作一度紧急暂停，军方也在中午一度下令暂停搜救行动90分钟，以观察上游水情和评估风险，并劝导沿河民众向高处撤离。
1: सर लोग ऊपर से इन्फॉर्म किया कि उधर ऊपर से बाढ़ बढ़ रहा है, तुम लोग सुरक्षित जगह पे बैठो, अपना मशीन लेके साइड में सुरक्षित जगह पे जाके बैठो, अभी मत काम मत करना, जब हम लोग बोलेंगे तब शुरू करना, अभी जाइए सुरक्षित बैठो。
0: 尼泊尔军方目前搜救重点是德里苏蒂河发电厂的隧道。当局发布视频显示，获救人员在满布泥泞的隧道口爬出。尼泊尔总理办公室指，救援团队已在一处水利发电工程隧道救出约350人，但仍有约100人受困。而在另一重灾区努瓦果德县，泥石流的破坏力随处可见。由于当地也面临新一轮洪水及泥石流等次生灾害威胁，官员使用扩音器和哨子劝导沿河民众向山上撤离。据尼泊尔气象部门预测，未来数日当地仍有持续降雨，道路塌方与泥石流极易阻断救援通道，伤亡人数恐进一步上升。凤凰卫视综合报道。
2: 稍后回来更多消息。